0: Senin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfe keh do to hata do main gustakhi ma gustakhi ma
3: mujhe kuch kehna hai
4: mujhe bhi kuch kehna hai
3: मुझे कुछ कहना है
4: मुझे भी कुछ कहना है
3: पहले तुम
4: पहले तुम
3: पहले तुम
4: पहले तुम
3: पहले तुम
4: तुम
3: तुम
4: तुम
3: तुम
4: तुम
3: तुम
4: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करके निकल गई थी उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए
3: कहती हूँ